विक्रम संवत 2082 शालिवाहन शके 1948 आज रविवार अधिक ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी अर्थात 7 जून 2026।

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

श्रोताओं सुनते हैं भरत व्यास की गीत रचना। संगीत है चित्रगुप्त और स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

क्षत्रिय वैश्य शूद्र संपूर्ण स्वाचार संपन्न वर्तति। तैसेचि अन्य जाति से लोक सत्यवादी असति सकलिक।

सोम शर्मा दच कला मनी परी नृसिंहा ते स्मरुनी तक्षणी नावेक उभा राहिला से। तब तो राक्षस ओरडत

श्रोताओं सुनते हैं भरत व्यास की गीत रचना। संगीत है चित्रगुप्त और स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।